राजा धर्म दुआरे गावन तुदन चित गुपत लेख जानन लेख लेख धर्म बिचारे गावन तुदन ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंदर इंदर आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे

पंडित पढ़न रखी सूर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माश पयाले गावन तुदनो

अखंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे, से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।

तर जिन सी माया जिन उपाई, कर कर देखै कीता अपना, ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहेबो, नानक रहण रजाई। आसा महला पहला।

कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकर आखण पाहे, वड्डा ना होवे घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा,

संगत नहीं आए। त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस।

बनता कोई न किस की तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मान पाओ करिया। ऊडे ऊड आवे सै पूसा तिस पाछ बचरे शरिया, तिन कवण खलावे कवण चुगावे मन मह सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट

हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा

तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाण, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौ पई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो।

मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद काहे हम एक ना जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे।

बावड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरै छड जाहे, पौ जल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण।

0: जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब, तुम मात पिता हम बारक, तुमरी कृपा मैं सुख कन्हेरे कोई न जाने, तुमरा उचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्रम।

मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सह।

पिंडिक सेवा कीर्तन दी प्रवान करनी हुई है पुला चुका दिखी मैं तंत साहेब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी दे गुरता गुरपुरब दिया लख लख वधाई हो सो इनिक सेवा प्रवान करनी कीर्तन कर दिया हुई है पुला चुका दिखी मैं करनी आओ अगले प्रोग्राम सिख पंथ के विद्वान ज्ञानी जसवीर सिंह जी उन्हों पासों तंत्र साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के बचन गुर इतिहास सिख इतिहास प्रिय दा स्वरूप ते प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बिंद कर हर करम श्रवण हर कथा हर दर घे नानक पूजल मथा कर हर करम श्रवण हर कथा हर दर घे नानक उजल मथा वाहे गुरु मुंदा संतोख शरम पत चोली ध्यान की करें बेपूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा परतीत आई पंथी सगल जमती मन जीत जग जीत आदेश

गुर ही नम है, सतगुर ही नम है, श्री गुरुदेव ही नम है, अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ, कल कलेश तन माहि मिटावौ, सिमरौ जास पिसंबर एकै, नाम जपत अगंत अनिकै, वेद पुराण सिमरत सुदाख्यर, किन्हे राम नाम एक आख्यर, किनका एक जिस जीव बसावै, ताकि महिमा गनी ना आवै, खांकी एकै दर्श तुहारो, नानकुन संग मोहे उदारो, सुखमनि सुखमृत प्रभु नामु, भगत जना कै मन विश्राम रहाउ, प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभु कै सिमरन भउ न ब्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख न सुनतापै, प्रभु कै सिमरन साध कै संग सर्व निदान, नानक हर रंग, प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी, प्रभु कै सिमरन होए सुफला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला, से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए, प्रभु कै सिमरन सब ते ऊचा, प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब किछु सुझै, प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहि समाए, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगर वाला, प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरह तिन अनद कनेरे, प्रभु को सिमरह बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन निह चलियासन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रभु मया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीचों उठ जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बजाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ सात, अष्टपदी जिह मात पिता सुत मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई, जय महा प्यान दूत जम दलै, ते केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुश्किल हुवै त भारी, हर को नाम किन माहे उधारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया,
लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरे, अनिक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत आघावे। जिह मार्ग हो जाते के लाओ, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम सदा त्याय, नानक गुरमुख परम गत पाइये। छूटत नहीं कूट लखबाही, नाम जपत है पार पराही, अनिक बिघन जय आई सिंगार है, हर का नाम तत्काल उधार है, अनिक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कबू न तू वै, हर का नाम कूट पाप खूवै, ऐसा नाम जपू मन रंग, नानक पाइये साध कै संग। जिह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा, जिह पैडे मांद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को न सुझानू, हर का नाम तै नाल पछानू, जय महाप्यान तपत वो काम, तै हर के नाम की तुम परचामू, जहां त्रिकामन तुझ आकर कै, तै नानक हर हर अमृत बरखै। भक्त जना की बरतना, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्मजन की नो दान, मंथन रंग रत्ते रंगे कै, नानक जन कै बिरत विवेकै, हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन को आप प्रभु दीना, हर हर जन कै ऊठ सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोजन हर रस राते, सुन समाद नाम रसमाते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लत्ता, नाम की महिमा संत ऋतुवसै, संत प्रताप दुर्ग सब नसै, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है, नाम तुल कछे अवर न हुए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरति, पेखे सर्व टंडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत व्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिय कबार, नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, मां उदास तपी सरती वै, अग्न माहि होमत प्राण, कनिक सब है वरपूम दान, न्यौली कर्म करै भोवासन, जैन मार्ग संयम साधन, निमख निमकर शरीर कटावै, तौ भी होमे मैल न जावै, हर के नाम समसर कछ नाहि, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि, मन कामना तीर्थ दे छुट्टै, गर्व गुमाना मन ते उठै, सोच करै दिन सरात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखे अटरे, जल तू है बहु देह अनीत, शुद्ध का होय काची पीत, मन हर के नाम की मैं माऊच, नानक नाम उदरे पतत पाऊच, बहु सियान जम का पौ व्यापै, अनिक जतन कर त्रिशन्ना त्रापै, पेख अनेक अग्नि बुझै, कूट पाव दर गैनी सीजै, छूट सुनायु पयाल, मुह व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जमडान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लोरै, सा संगे हम है छोरै, जे को जन मरण ते डरै, साजना की सरनी परै,
जिस जन को प्रभु दर्श पे आसा, नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रदान, साध संग जाका मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गणिये सब ते उच्चा, जाका मन हुई सगल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट छीना, मने अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सुरस साजना, सो दूजन समदृष्टिता, नानक पापुन नहीं लेपा, निर तन को तन तेरो नाउ, निथावे को नाउ तेरा थाउ, निमाने को प्रभु तेरो मानो, सगल कटा को देव दानो, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जन हुआ पे, अपन संगा प्रभराते तुम रिष्ट तुम ते हो, नानक अवर न जान सकोय, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, सासंग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम मैं उद्यम फला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जसन रसन बखानी, सगल थान ते उत्तम थानो, नानक जी कट वसै हर नाम सलोक, निर्गुण यार एने सो प्रभ सदा संभाल, जिनकी आतिशीत रख नानक निभि नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू सासवार सिगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे, दूध भर जोबन भोजन सुख सूध, बिरद पयाओ पर साख सैन, मुख पयाओ बैठ को दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बूझे, बख्श ले हो तो नानक सीजे, जेह प्रसाद तारू पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संग हसै, जे प्रसाद पी वह शीतल जला, सुखदाई पवन पाव कमुला, जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस पाव करने तरसना, तिसे त्यागवर संगरचना, ऐसे दोख मुड़ंद व्यापे, नानक काट ले हो प्रव्यापे, आदंत जो रखनहार, तिस्यों प्रीत न करे गवार, जाकी सेवा नव निध पावे, तासु मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर ससदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावे दरगह मान, तिसे विसारे मुग्ध जान, सदा सदा भूलनहार, नानक रखनहार अपार, रतन त्याग कौटी संग रचै, सा छोड़ झूठ संग मचै, जो छिड़ना सो अस्थिर करमानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाय तिसका श्रम करै, संग सहाय तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै तोहे, गर्द विपरीत भस्म संग होए, अंधकूप में पतत विकराल, नानक काढ़ लिहो प्रभु दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पछारा करै दिन रात, बाहर भेगंतर मल माया, छिप सुनाए कछ करै छुपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ स्वान, बाहर भेगंतर मल माया, छिप सुनाए कछ करै छुपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ स्वान, अंतर अग्न बाहर तुम स्वाहा, गल पात्र कैसे तरह था, जाके अंतर वसै प्रभ्याप, नानक तेजन सह समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गहले हो उड़ निभावे, कहा बुझार दबू जय डोरा, निस कही है तू समझे पूरा, कहा विष्णु पद गावे गुंग, जितन कर तौ पी सुर भंग, कह पिंगुल पर्वत पर भवन, नहीं हो तू हाँ उस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरै, संग सहाई सुहावै न चीत, जो बैराई तस्यो प्रीत, बलवा के गृह भीतर बसै, अनंत केल माया रंग रसै, दृढ़ कर मन मनि प्रतीत, काल न आवै मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह, आहो जुगत बिहाने के जन्म, नानक राख लियो अपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम बात पिता हम बारग तेरे, तुमरी कृपा में सुख अनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, उच्चे ते उच्चा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हो सुआज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुरबानी, श्लोक देन हार प्रभु छोड़ कै, लाग है आन सुआए, नानक नसी जई, बिन नावै पत जाय, अष्टपदी
दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण विकोट गवावे, एक भी ना दे दस भी हिर ले तो मूड़ा को कहा करे। निष्ठा कुरस्यो ना ही चारा, ताको की जय सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रमिठा, सर्व सुख था हूँ मन उठा। जिस जने अपना हुक्म नाया, सर्व सुख नानक तिन पाया, गंत साहु अपनी देरा, खात पीत बरते अनुदुलास। अपनी मान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोष करे, अपनी प्रतीता पही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस किसी आज्ञा राखे, प्रभ की आज्ञा मान मत है, उसते चौगुन करे निहाल। नानक साहिब सदा दयाल, अनिक पात माया के हित, सर पर होत जान अनित, बिर की छाया स्यों रंगलावे, उबिन सेव मन पछतावे। जो दिशा सो चालन हार, लब ट्रियो ते अंध अंधार, बठाओ सो जो लावे नेहि, ताको आत्मावे के मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटम सुभाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राजोवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया फेक हस्ता, मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्त गुमान, अस्त्र पग सात की सर, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब ही सफल दे, नानक हर हर नाम ले, वृति सागत की आर जा, साच बिना कह होत सुचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाये, मेघ बिना जो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, जो कृपन के निरार्थ दाम, धन धन ते जंजी कट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछवर कमावत, मन नी प्रीत मुखो गंडलावत, जान नार प्रभु परवीन, बाहर फेक न काहु पीन, अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन में मरे। इसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक जन चरण पर आता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया या पहमाने। आप है आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत, नेरा पाप सियान सगल ते रहत, सब का जाने आत्म की रहत। जिस भाव है तिसने लड़ लाए, कांत नंतर रहा समाये, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरि श्लोक। काम क्रोध यार लोभ मोह, बिन सजाए अहंग मेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि। जी प्रसाद छत्ति ही अमृत काहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जी प्रसाद सुगंधत धन लावे, तिसको सिमृत परम गत पावे, जी प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मने अंदर। जी प्रसाद ग्रे संग सुख बसना, आठ पैर सिमरो तिस रसना, जी प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जी प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसे त्या कतवर लुभावे, जी प्रसाद सुख से छुई जय, मन आठ पैरता का जस गावी जय। जी प्रसाद तू सब को मान, मुखता को जस रसन बखान, जी प्रसाद तेरु रहता धर्म, मान सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जप दर के मान पावह, नानक पद छेती कर जावह। जी प्रसाद आरु कंचन देही, लावो तिस राम स्नेही, जी प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जी प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके, जी प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन साह सा सिमरह प्रभु उचे। जी प्रसाद पाए दुर्लभ देहि, नानक ताकी भगत करे। जी प्रसाद आप भूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। जी प्रसाद अश्व हस्त सुवारी, मन तिस प्रभ को कबहु न बिसारी। जी प्रसाद बाग मिलक तना, राख परोए प्रभ अपने मना, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठ सत सहते आई, तिसे त्याय जो एक अलख है, यहाँ उहा नानक तेरी रख है।
जे प्रसाद करे पुन भवदान मनाट फिर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी। जे प्रसाद रे सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद भिख है विस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहज।

युक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास हो ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश हो ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा ब्रह्म ज्ञानी कहना ही तंधा ब्रह्म ज्ञानी लेता हो तो बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह भसै प्रभसंग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग भूत त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कार सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी निष्कर प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का आदर्श बट भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानिया परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी के सगल मनवाहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए ताखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साधु जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक और तार है जो अंतर नाम सर्व में पिक है भगवान ठाकुर नमस्कार है नानको पर सगल निस्तार है मिथिया ना ही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पेख नेत्र साध गिथैसन संगीत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरे मन की भाष न मन ते टरे इंद्री चित पंच रोक ते रह नान कुट मध्य को ऐसा परस भय सुनो सोज सुपर सुपर सन विष्ण की माया ते हो भिन्न कर्म करत हो वह नहीं कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म काहू फल की चा नहीं बाछ केवल भक्त कीर्तन संग्राच्य मंत्र यंत्र सिमरण गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वह नाम जपावे नानक वैष्णु परम गत भावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन थे बिनस सगला परमु कर पूजे सगुल पार ब्रह्मु सासु पापा मल कुवे तिस भगवती की मत उत्तम हो वह भगवंत की टहल करे नित नीत मंथन अर्पय विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम मैं शुद्ध है राम नाम सारस पीवे उस पंडित कह वे जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नया वह वेद प्रण सिमृत बुझे मूल सुख मैं जान अस्तूल चौहर ना को देवपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौहर ना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सासंग पावे जन कोय कर कृपांतर उतार है पस प्रेम मुद पात्र को तार है सर्व रोका उखद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काऊ जुगत कितै न पाइये धर्म नानक तिस मिलया जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास हो तिसका नाम सतराम दास हो आत्म राम तिसने दरी आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगे परवानु अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूझी परे सगल संगातु दास ऐसी जुगत नानक राम दास तब की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुख सो कहावे तैसा हरख तैसा सोग सदानंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी तैसा मृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंक तैसा राजा जो वरताए साई जुगत नानको पुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राख तैसा तिन्नाओ आपे करण करावन जोग प्रभाव है सो विपुन होग पसुर आप हो अंत तरंग लखी न जाही पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे
तैसा प्रगासु पार ब्रह्म करता विनाशु सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जानंत न पारावार नानक रचना प्रवृति बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थ वासी कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद की श्रुति कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नान करते कांत न पाव है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेगा तुम निकोर कई कोट पर दर्व को ही रह कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाहे कई कोट प्रदेश प्रवाहे जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सृजती जोगी कई कोट राजे रसभोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पात्र वृक्ष निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सुतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस ताम सातक कई कोट वेद प्राण मृतर शास्त्र कई कोट की रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जकि नृपिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच सब ती नीर सब ऊँथे दूर नानका बलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीवै मरह कई कोट भोजुनि फिर है कई कोट बैठत ही काहे कई कोट काल थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जय पाणा तह तैरा के नानक सब किच प्रभ कह हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म है पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ्यास तिनको मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुत किन्नो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा के कंकार कई कोट किन्ने बहुपात प्रभते हुए ब्रह्माय समात ताकांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तुम प्रकाश कई कोट तत् के बेते सदा निहार है को नित्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पै सत सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे तुमरा सुख सह सुमावे अपने जन को सा सा सुमारे नानकोए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रवेक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार नै जल तल मही अलसो अष्टपदी करण करावन करण है जोग जो तिस भाव है सोई होग किन मै तापो थापन हारा अंत नहीं किच पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावै मानुकत पावै प्रभावै ता पात्र तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण भाकै प्रभावै ता पथ तुधारै आप करै अपन विचारै दुहांक सिरियां का आप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि वरनै आवै कोह मानुक ते क्या हुए आवै जो तिज पावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब पिछले जो तुझ भाव है सोई करे अनजानत भिख्या मह रचै जे जानते अपन आप बचै पर मैं भूला दह दिस्तावै निमख माए चार कुंट प्रियावै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले
खिन मैं नीच कीट कौराज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा दिस प्रगटावै जाकू अपनी करै बख्शीश ताका लेखा नगन है जगदीश जीव पिंड सब तिसकी रास कटकट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै दिख बढ़ाई इसका बल नाही सहाथ करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बुपरा जियो जो तिस भावै सोई फुंथियो कबहू ऊंच नीच में बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू बकास पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला बनहार कबहू नृत्य करै बहुपात कबहू सोए रह दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो त्रवाल कबहू होए वह बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू अब कीर्त में आवै कबहू भला भला कहावै क्यों प्रवराख्य तिवही रह गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधिक मुख्यान कबहू कीट हस्त पतंग हो जिया अनिक जोन पर मैं परमिया नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावै ज्यो प्रभावै तिवै नचावै जो तिस भावै सोई होई नानक दूजा वरना कोई कबहू सा संगत उपावै उस स्थान ते बौर न आवै अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रत्ते करंग सदा बसै पार ब्रह्म संग ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना हिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती हो उत्सवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत पिष्टा का जंत आप इसको करवंत कहा वह जन्म रह भोजन परमावै धन भूम का जो करै गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक यहाँ मुक्ता गै सुख पावै धनवंता होए क्या गर्वावै धनवंता होए कर गर्वावै तृण समान का संग न जावै बौलस कर मानुक ऊपर करे आसु फल भीतर ताका हुए विनासु सब थी आप जाने बलवंत खिन मै हुए जाए पसमंत किसे न भदय आप अहंकारी धर्म राय किस करे कुवारी गुर प्रसाद जग मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म करै हो तारी श्रम पावै सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवै हर दर गह को कैसे गवै आप इसको जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेण जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछोए तब इसको सुख नाही कोए जब जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निचल नाही जीत जब लग मुह मगन संगमाए तब लग धर्म राय देश जाए रब कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटेला कोट थावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनिक भोग विकिया के करै नह तृप्तावै कब कब मरै बिना संतोख नहीं कोरा जय सुपन मनोत वृत्ति सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किच कीनो सु अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझे देखे करै विवेक अपहे कपहे अनेक मरै न बिन सह आवै न जाए नानक सद ही रहा समाए आप दिसै समझे आप अपे रचिया सब कै साथ
आप किनु अपन विस्तारु सब कछु सकाउ करने हार। उस्ते भिन्न कहो किछु हुए थांत अनंतर एकै सोई अपने चलत आप करने हार। कौतुक करे रंग आपार मन में अमन अपने माहि नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी। सच सच सत सब कीना कोट मध्य किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप अति सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। सलोक संत शरण जो जन परै सो जन उतरन हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै। संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टै। संत कै दुखन सुख सब जाए। संत कै दुखन नरक में पाए। संत कै दुखन मत होए मलीन। संत कै दुखन सो बाते हीन। संत के हते को रखै न कोवे। संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै। नानक संत संग निंदक भीतर है। संत के दुखन ते मुख पवै। संतन कै दुखन काग जो लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए। संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए। संत कै दुखन तृष्णा में जलै। संत कै दुखन सब को चलै। संत कै दुखन ते सब जाए। संत कै दुखन नीच निचाए। संत दुखी का था को नाई। नान संत पावे ताहि पीगत पाए। संत कंदक महातताई। संत कंद किन टिकन न पाई। संत कंदक महत्यारा। संत कंदक परमेश्वर मारा। संत कंदक राज तेहीन। संत कंदक दुखियार दीन। संत के निंदक को सर्व रोग। संत के निंदक को सदा बेजोग। संत की निंदा दुख में दुख। नान संत भाव है तो उसका भी हुए मोक। संत का दुखी सदा पवित। संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागे। संत के दुखी को सब त्यागे। संत का दुखी महा अहंकारी। संत का दुखी सदा भिकारी। संत का दुखी जन्म मरै। संत की दुख ना सुख ते टरै। संत के दुखी को ना ही ठाऊ। नानक संत भावै ता ले मिलाए। संत का दुखी अद बीच ते टूटै। संत का दुखी किते काज ना पहुंचै। संत के दुखी को ध्यान परमाइयै। संत का दुखी उजड़ पाइयै। संत का दुखी अंतर ते थोता। जो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किछ नाही अपन बीजा पे आए। संत के दुखी गवर्न राखन हार। नानक संत भावै ता ले उबार। संत का दुखियों बिल लाए। ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै। ज्यो पाव किंद नहीं त्रापै। संत का दुखी चुटै करेला। ज्यो बुआड़ चल खेत माही दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत। संत का दुखी सद मिथिया कहत। किरत निंदक का तुर ही पया। नानक ज्योतिष भावै सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए। संत के दुखी कौ दर गह मिलै सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है। संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजै ना आसा। संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख न तृष्ट को जैसा भाव है तैसा कोई हुए। पै कीर्तना मिट्ट कुए। नानक जाने सच्चा सोई। सब घट तिसके करने हार। सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की स्तुति करो दिन रात। सहते आवो सास निराज। सब कछ वरते तिसका किया। जैसा करे तैसा कोचिया। अपना खेल आप करने हार। दूसर कौन कहे बिचार। जिसनो कृपा करे तिस आप नाम दे। बड़भागी नानक जन से। सलोक तज हो से आनप सुरजन हो। सिमरहु हर हर राय। एक आस हर मन रखो। नानक दुख परम पौ जाय। अष्टपदी मानु की टेक वृति सब जान। देवन को एक भगवान। जिसके दिए रह अघाय। बहु न तृष्ण लागे आय। मारे रखे कुआ। मानु कह किछ नाही हाथ। तिसका हुकुम सुखो। तिसका नाम रखंठ बोलोए। सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए। नानक बिगन न लागे कोई। उस्तत मन में कर निरंकार।
करमन मेरी सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पीओ सदा सोहेला कर ले जियो। नैनो पेग ठाकुर का रंग साध संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिय हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक पूजल मथा बड़ भागी ते जन जगमाही। सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो कर है विचार चेतनवंत गणी संसार मंथन मुख बोले हर मुखी। सदा सदा जानो थे सुखी को एक एक पचाने इत उत की सूझी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्हें निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपन आप सुजय तिसकी जानो तृष्णा बुझय। सात संग हर हर जिस कहत सर्व रूप त्यो अर्जन रहत। आंदिन कीर्तन केवल बख्यान गृष्ट में सोई निर्वाह। एक ऊपर जे जन की आशा तिसकी कटी है जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लाग है दुख। जिसको हर प्रमंच ते आवे सो संत सोहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे। जैसा सत्य सा दृष्ट आया अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीझिया गुर प्रसाद तत् सब बुझिया। जब देखू तब सब किच मूल नानक सो सुखम सोई असूल। न किच जन्मे न किच मरे अपन चलता आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आप वन किच उतरच थाप थाप वनासी नाही किच कांड। तारन तारे हो ब्रह्मांड अलख अभे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सो भावंत सगल संसार उतरे तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेले कृपाल गुर का सब भय निहाल उनकी सेवा सोई लागे। जिसनु कृपा करह बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम। नानक तिन पर को उत्तम कर मान जो किच करे सो प्रभ कै रंग। सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाए हुए सो होए। करने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिसमाए समाए। वे सुख निदान उन्हु बने आए आपस को आप दिनु मानु। नानक प्रवजन को जानु शलोक। सर्व कला भरपूर प्रभृता जानन हार। जाके सिमरन उदरिय नानक तिस बलिहार। अष्टपति टूटी गाडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरता कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप। अपन की आ कछु न होए जे सौ प्राणी लोचे कोए। तिस बिना ही तेरे किस काम गत नानक जपे कर नाम। रूपवंत हुए ना ही मोह है प्रभ की जो सगल कट सो है। धनवंता हो क्या को गर्भ है जा सब किस तिसका दिया दर्भ है। अतसूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहता वै। जे को हुए वह दातार किस दिन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रो नानक सोजन सदा हरो। ज्यो मंदर को थम मैं थमनो त्यों गुरु का शब्द मन स्तंभनो। ज्यो पाखा नाव चढ़त रह प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है। जो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास। जो महाध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बांछो तूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूर काहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये। दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्याग तुत सहचता। जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान। कौन बसताई तेरे संग लपट रहे रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे नानक पत चेती कर जाए। जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। ताज मां लेहु मन मूल राम नाम हृदय महतूल। लाद खेप संत संचाल अवर त्याग किया जंजाल।
धन धन कह सब कोई मुखू जिल हर दर गह सोए एह व्यापार विरला व्यापार है नानक ताकै सद बलिहार है चरण साध के तुय तुय पियो अर्प साध को अपना जियो साधगी धूर करहु इसनान साध उपर जाइये कुर्बान सा सेवा वड भागी पाइये सा संघार कीर्तन गाइये अनिक बिगंते साधु राखै हर गुण गाय अमृत रस चाखै उठ गई संतह दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवता धार सर्व निदान जाकी दृष्टि माही पूर्व लिखे का लहना पाहे साब किछ तिसका करने जो तिस बिन दूसर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोज निर्मल दिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए त्यो लोए जाके हृदय को होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दिल सचा आकार सच वर्तै सचा पासार पार व्रंजन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग के चित्रे गुण ते प्रभिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मै राख मानुखी तू प्रीत्याग तिस्ते पर नाहि किच कोए सब निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन हो अनुराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जाका नित्र फूर तिसका मंत्र न जाने होर अंदरू मंगल सज जाकै सर्व थोक सुनिए कर थाकै राज महराज जोग मह जोगी ताप मह तपीश्वर गृष्ट मह भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुरखा किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे चंदास नाम ते आवैसे त्यो गुण मैं जाको परमाहे।

नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेकर एक रंग नाना बिडकिनो विस्तार प्रभ बनासी एक अंकार नाना चलत करे खिन वाहे पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिडकर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगलाकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब माहे समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुरु ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर हृदय प्रवेश सत निरत बुझे जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष भाव है सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मार जिन बुझया तिस आया स्वाद रब कै रंग राजन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुखटनहार जा कै संग थरै संसार जन का सेवक सो विडभागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत भिखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया जा कह हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तुस मन प्रगटाया भय ते निर्भउ हुए बसाना जिस ते उपजया तिस माहि समाना वस्त माहे ले वस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाई बुझ है बुझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालनहारा सेवक की राख्या निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धार है नानक सो सेवक सा सा सुमार है अपने जन का पर्दा ढक है अपने सेवक की सर पर रख है अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख है ताकि गत मित कोई न लख है प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक उचते उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख है भस्म कर लश्कर कोट लख है जिसका सास न काट ताप ताको राख दे करात
मानस जतन करत बहुभात, तिसके करत बिरथे जात, मारन रखे वरन कोए, सर्व जिया का रखा सोए, काही सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रबल विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पिय मृत्यु मंथन तृपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसकी चवर नाहीं दृष्टाया, नाम तन नमो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रजो जन तृप्तानी मंत्र, नाम मह नाम समानी, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सुध काम, बोलो जासो जे बा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करे भगत आत्म कै चाई, प्रभ अपने सो रह समाई, जो हुआ हुवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने, किसकी महिमा कौन बकानो, किसका गुण कह एक न जानो, आठ पैर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिन की उटले हे, मन तन अपना तिन जन दे हे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, किसकी शरण सर्व सुख पावे, किसके दर सपा मिटावे, अवर से अनुप सगली चाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जाना हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद भैरा, श्लोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिस कै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ, अष्टपति सतगुर सिक्की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिक्की गुरु दुरमत मल ही रह, गुरु वचनी हर नाम उचरै, सतगुरु सिक्के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुरु सिक्को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी हे, सतगुरु सिक्का हलत पल सुवारै, नानक सतगुरु सिक्को जी नाल सुमारै, गुर कै गृह जीवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै, आप उसको कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बिचै सतगुरु कै पास, इस सेवक के कार्य राव, सेवा करत हुए नहीं कामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेव गुर की मतले, बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाव अनित बार, गुर को बल जाने।

ब्रह्म विकै आप नहीं कछ परमो सहस्यान प्लया न जाइए नानक ऐसा गुरुवड भागी पाइए सफल दर्शन पेकत पुनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गह गवे सुन कर बचन करन आघाने मन संतोखा तुम पथियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पे कह हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नान जिस पाव है तिस लय मिलाए जीवाय कुस्तन एक सतपुर पूर्ण भवे काहु बोल न पहुंचित प्राणी गम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन न पाए अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरै सद बलिहारी सदगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने वरस पावे जन कुए अमृत पीवे अमर सो हुए उस पुरखा ना ही कदे बिना जाके मन प्रगटे गुणताज आठ पैर हर का नाम ले सच वधे सेवक को दे मो माया के संग न ले मन में रखे हर हरे कंध कर दीपक प्रकाशी नानक परमो दुख तैथे नासे तब तुम्हारे ठाठ वरताई अनंत भया दुख नाठे पाई जन मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पाओ चुका निरपो हुए बसे सगल व्याद मन तिखै नसे जिसका सातिन कृपा तारी सा संग जपना मुरारी तिथ पाए चुके परम गवन सुन नानक हर हर जो श्रवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चित प्रभाव बनाए अपने कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोए सर्व निरंतर इको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साथ कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनिक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार एक सिमरनाम आधार अवर उपाव समीत विसारू चरण कमल हृदय में उतारू करण कारण सो प्रभ सम्रत दृढ़ कर गहो हो नाम हरवत एहो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा खु मन बाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन कहो चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख नित बाछ मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनिक उपावी रोग न जाय रोग मिटे हर कदलाए सर्व निदान में हर नाम निदान जब नानक दरगह परवान मन पर बोधो हर कहनाए दास तावता बैठाए ताकु बिघन लागे कोई जा कर दे बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होयास भगत पाया तुम प्रगास तित कारु जाय बसे विनासी कौ नानक काटी जम्पासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सुखा चुका चा आवागमन मिटै प्रभु शिव आप त्याग शरण गुरुदेव नवरतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक पावना छुटन हारे सिमर शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल स्थिर है तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम वरवण तैंते कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो हो कवन छुटकार असा तीरथ सवारी झूठा डम झूठ पासारी जिंदी तिस बुझे न बिगाना नाम विसार नानक पुछताना गुर की मत तू लेहे आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करहु मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखू मन माही जन्म जन्म के किल बिख जाए आप जपू हमरा नाम जपाऊ सुनत कैत रहत गत पाऊ सार पूछत हर को नाओ सह सुभाए नानु गुण गाओ गुण गाव तेरी तुरस मैलो बिन सुझाए हो मैं बिख फैलो ओहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रासर नाम संभाल छाड़ सुयान सगली मना सास संग पावे सच तना हर पूंजी सच करो व्यवहार इहां सुख दर गै जय का सर्व निरंतर एको देख
कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साला एक सिमर एको मन आहे। एक के गुण गाव अनंत मंत्रन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर हो प्रभ आप। अनेक विस्तार एक ते पहे एक रात प्राचित गए मंत्रन अंतर एक प्रवरता गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तव शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपति। जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो धूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गाओ साथ साथ प्रभु तुम्हें त्याहूं चरण कमल से लागे प्रीत भगत करूं प्रभु की नित नीत। एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभु की दृष्टि मां सुख हुए हरस पावे बिरला कोई जिन चाके असे जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपार परे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगासन दिन लिवलाग बड़भागी जपिया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवकी मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवकीनो सदा निहाल। बंधन काट मुख जन भया जन मरण दुख भ्रम गया चुनी श्रद्धा सब पूरी रव रया सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये। सो क्यों बिसरै जी काल न पाने सो क्यों बिसरै जी किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किस्तिया सो क्यों बिसरै जी जीवन जिया सो क्यों बिसरै जी अगन मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जी बिकते काटै जन्म जन्म का टूटा गाटै गुरपूरै तति है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एका आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो हवरै नाम जपावो। भगत भाई तरियै संसार बिन भगति तन होसी चार। सर्व कल्याण सुख नित नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुखा होत नास नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाहो मंतन अंतर ही सुहाओ नित्र उपेगदर सुख होए मन विकसै सा चरण धोए। भगजना कै मंत्र रंग बिरला को पावै संग एक बस दीजै कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाय नानक रहा सर्व समाये। प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वछल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आत पुर कारण करताल। भगजना कै प्राण धार जो जो जपै सोहे पुनीत भगत पाए लावै मनहीत। हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए निम करके गुण गाए अनिक राज को बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का पर संगीत रसना जप थी हर हर नीत भली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत। सा संप्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास। लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपति जब कार्य कछ न दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संकमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्क शोक किसह व्यापत। जब अपन आपा फार ब्रह्म तब मोख आक सोवत भरम अपन खेला वर्ती जा नान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कौ किसको गनी। जब एक रगम पार तब नरक सुर कौ कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै अपन चलताप करने हार। नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपनासन तै जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रसोए तब जम की त्रास कहो किस होए।
जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपना पापी चर जा नानक अपन रूपा पी उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो हो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चिदर लगत को कीश जय जो स्वरूपी जो संग समावै तय किसै भू कवन त्रिपतावै करण करावन करने नानक करते का नाही समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत भाई जय सर्व कलाया पै परवीन तय वेद देव कहा कूची जब अपन आपा पुर धार है तो सगन सगन कहा विचार है जे अपन उचापन अपनेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप ये अचल छेद भेस माया हुआ किसे व्यापत माया आपस को आप है आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जह कह एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपना आपा पतियारा तय कौन कथे कौन सुन नहारा बहु बेअंत उच ते ऊचा नानक आपस को आप है पहुंचा जय प्रचो प्रपंच कार त्यो गुण में किन्नो विस्तार पापुन तय पै कहावत को नर को सुर्ग बंशावताल जाल माया जंजाल हूं मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपज्ञान अपन खेला कर दिख है केवल संकोच है तो नानक एक है जय अभिगत भगत है आप जय पसरै पसार संत प्रताप दुहू पाका आप है तनी उनकी शोभा नुहू बनी आप है कौत कर आनंद चो जो आप है रस भोग निर्जोग जिस भाव है तिस अपन ना इलावै जिस भाव है तिस खेल खिलावै बेसुमार था गंत अतुलै ज्यो बुलावहु त्यो नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपह का विस्तार जात इस भावै तां सृष्ट उपाय अपने भाणै लै समाए तुम ते बिन नहीं किच होए अपन सू सब जगत परोए जाको प्रभु जी आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् कविता नानक सगल सृष्ट का जीता जी जंत्र सुभता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ तिस राख तिस कोई न मार सो मुआ जिस मनो बिसार तिस तज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुग जा कै सुभात अंतर बाहर जान हो साथ गुण दान बेअंत पार नानक दास सुधा भलिया पूर्ण पूर है दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रतपाल जीन बहुपात जो जो रचियो सुत सहत्यात जिस भाव है तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जानिया जन लागा हर एक कहनाई जिसकी आसन वृत्ति जाए सेवक को सेवा बने आए हुक्म भूत परम पद पाई इसके ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंदन पूजह गुर के पैरे लोक सुखे पर लोक सुहेले नानक हर प्रभा पह मेले सासंग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उधार अमृत वचन के गुण गाओ प्राण तरन का यह स्वभाव हाथ पैर प्रपेखो नीरा मिटे ज्ञान बिन सह अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाव हो मान इच्छे नानक फल पावो हल्त पल दोले हो सुवार राम नाम अंतर उधार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परिखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरदह निभह के तुम्हारी एका टेक रखो मन भाई नानक बहुरणाया वह जाए तिस्ते दूर कहा को जाए उभरे राखन हार त्याय निर्भव जपै सगल भव मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभु राखै तिस नाहि दूख नाम जपत मन होत सुख चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन कहो कोई न पहुंचन हार सिर पर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा
मत पूरी अमर जाकी दृष्ट दर्शन प्रेखत उदरत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हरूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहूत निहाल ताकै निकट न आवत काल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया सलू।

नानक मन परदास अष्टपदि संत संगंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समग्री एक कट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा हे नवनीत अमृत प्रभ का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाधन हत्याना कह न जाये चर्च विस्मा तिन देखे अज सब दिखाए नानक तिजन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत धरन माहे आकाश पया सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी वैसंतर माहे चार कुंट दै दिशे समाहे तिस्ते पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मैं देख सस्य सूर नखेत्र मैं एक बाणी प्रभु की सब को बोले आप डोल न कबहू डोले सर्व कला कर खेलै खेल मोल न पाइय गुण है अमोल सर्व ज्योत मैं जाके ज्योत धार्यो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं इहो विश्वास संत जना का पिखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुनह सुबचन सर्व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिस की है रैत सत बचन साधु सब कैत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभु जाने अंतर बसे बार पियो भी नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एक अंकार अनिक कला लखी न जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप जाए सर्व भूता वरतारा सर्व नैन

आज्ञाकारी की निमाया। सब कह मद अलिप्तो रह, जो किछ कहना सुआपे कह, आज्ञा वै आज्ञा जाए, नानक जा भावै ता ले समाए। इसते हुए सुनाही बुरा, पूरे कहो किने कछ करा, आप ला कर तू तत निकी, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, ओत पोत अपन संग्राच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर हुए ता सो जी पाए। जिसका

दुख पंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर सिमर सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी कहे आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल हे रतन। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोक निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द नाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय। प्रगटे गोपाल महांत के माथे, नानक उदरे तिन कैसा थे। शरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभा मिलाए। मिट गए बैर भये सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न भये गुरुदेव, पूर्ण होई सेव की सेव। हाल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभ ही खेप हमारी। प्रभ की उस्तद करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सुहूत निदान। सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब त्यू छपाए स्थान, बहुर न हो वै आवन जा। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगासु, सब कै मद सगल के उदासु। सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता। एह फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग महता की गत होए। गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन बिसराम। कोट अपराध सासन मिटै, संत कृपा ते जमते छुट्टै। जाकै मस्त कर्म प्रपाए, सात शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रवचीत। जन्म मरण का दुख निवारै, दुलभ देहे तत्काल उदारै। निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि समानी। दुख रोग बिन

राम सुखमनी सब ते उचता की शोभा बनी नानक हे गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लेवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह स्याण पां लख होहे तां इक न चलै नाल।

ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਾਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹੈ ਬੇਭੂਤ ਹਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲਿਖਿਆ ਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਉ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ ਏ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਸੁਣ ਗਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸਾਣ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੋਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੂਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ
ना ओहे मरहै न ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लोक करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल कड़िए शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो आपणी के नेड़ै के दूर जिने नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिने नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं शपै छंद त्व प्रसाद चक्र चिन्ह अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहि जय कोट इंद्र इंद्राण साहु सहान गण जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनीले नमस्तं अनादे नमस्तं अशेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सोएकै नमस्तं अनेकै नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निरकर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निरदेशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरतहते नमस्तं निरकहते नमस्तं निरतूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं नृतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निधाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभुगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरमे नमस्तं जलासरे नमस्तं निरासरे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेसे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्भामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवै नमस्तं अपेवै नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अबरने नमस्तं अमरने नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतंदे नमो सत अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्बाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे
नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले जाचरी शांत त्वा प्रसाद। अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमित है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है नृसृक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रयात छंद। नमो सर्व माने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पहुणे अनंगिया नाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पहन पहने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगिया नामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज रज वेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोग वेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रज वेश्वरं परम मृदे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोग वेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इस्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं। सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तो निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद। जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद। अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निधाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद। अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल शांत त्वा प्रसाद। आदरूप अनाद मूरत अजोन पुरुख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पुनकाल यत्र तत्र विराजहि अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरुख उदार मूरत अजोन आद आशेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन तीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक।
देव पेव न जानहि जेह बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरै चत्र चक मानहि पुरतीन लोक चाउ दह के बिखै जग जापहि जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विसवरच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन ओसत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानहि जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाख तनेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपहो प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहो शाहान शाह राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मेत गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाडय अंड अंड बाडय चाचरी शांत त्व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात शांत चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वरती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिसै आदिसै अदृशै अकृशै भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आशिज दिसै के अभिज पिसै के अगंज करमै के अभंज भरमै के अभिज लोकै के आदित सोकै के अवतूत बरनै के विभूत करनै के राजम प्रभाहै के धर्मं तुजा है के अशोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रि है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपहो अनुपह के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहिने के एक अधीन के रोजी रजा कह रही में रेहा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अफूल गुना है के सहान सा है के कारण कुनेंद है के रोजी दहंद है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र भावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्या है के सर्वत्र थाप्या है के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीमे के परमं फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमें सुलसलामे सलीखतम दामे गनीमुल शिकस्त है ग्रीबुल परसत है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है कमीजुल तमामे रजूअल निधान है हरीफल अजीमे रजायक जितीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है
सदैव स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्त उपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्त सलाम हैं, सदैव अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबादे अगंजे अगादे सुबं सर्वपागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपोगत स्वरूप हैं, अशेज हैं, अशूत हैं, किनर्कं प्रणास हैं, कृतियुल प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, विपुगत स्वरूप हैं, प्रजुगत अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विपुगत प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रजुगत अनूप हैं, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, परम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंद है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटा है, अगाह है, असंब है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट शांत त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल शांत त्व प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगिया नामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती शांत त्वा प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी दहेंद है के राज करहेंद है क्रीम उल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीम उल खिराज है गरीब उल निवाज है हरीफ उल शिकान है हैरास उल फिकान है कलंकंग प्रणास है समस्त उल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्त उल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेक है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मधुभार शांत त्वा प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिसवेश अपंड जल थल महंत दिसवेश बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आजान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशेज गात आज जिना बात अनचंज गात अन रंज बात अन टट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणाल है अरकाल्य है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरन है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनास्य है करुणा कर है विश्वम्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृतामृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृतामृत है
अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खालकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अरे गंजन है रे प्रतापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्मवस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग तम संग सांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अशरी छंद अजय अलय अपह अभय अभू अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे परमाते अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं बेभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें त्वा प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बेद न्यावत सीस न जात बिचारे एते पहे तो कहा पहे भूपत अंत कौ नागे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गूंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही हाय राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सब सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरयार अब चारे सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया
दानव देव फनेंदन साचर भूत भविख पवन जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थप थपेंगे पुन प्रतापन बाड जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इस नानक जादिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फिर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो वास कियो विख्यान सो बैठ कह ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशाक उसी सनेवायो को बुतान को पूजत है पश को मेर तान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पश को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाह दसवें कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है हु जो सदा हमारे पच्छा श्री आस तुज जो करे हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाये प्यारे दीन बंद दोष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जचन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो घाट घाट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है घाट घाट के पट पट की जान है जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत बेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव
आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पायो राव कही भूपा अंडज जेरज से तज कीनी ओत भुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संक्र एकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब तारे जो काल को एक बार ते आय है ताके काल निकट न है आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके पाप तनक मोह हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी सर्ब ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस तुझ जब पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तसै व्यापत कोई अड़िल सुने गूंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूड़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकटना तिन नर के रहै हो जो याकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजै अर्ध सहस फुन तीन कहिजै भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीरस पद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक ना जाने ओ श्री अस पान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे ओ सब तुहे बखाने ओ दोहरा सगल दुआ

कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। आव हो संत प्यारे हो अकथ की क्रह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है। तन मन धन सब सौंप गुर कौ हुक्म मन्ने पाई है। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गावो हो सच्ची बाणी। कहे नानक सुनो हो संतो हो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत भरम पुलाया माया त मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटहौ जिन मोह मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ। ऐसा कम मूले ना कीचै जिथे अंत पछोताईऐ। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा। अपना आप तू जानहे जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणाए। आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया। कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीने सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए एक वेख पर सुन आया। लाभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली चाला निराली भगत हकेरी। बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार ताज त्रिशना बहुत नाही बोलना। खन्या हो तिखी वाल होने की एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी। कहे नानक चाल भगत हां जुग जुग निराली। ज्यों तू चलाए तिव तिव चलहै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाहे तिव चलहै जिना मार्ग पावहे। कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावहे। जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे। कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावै तिव चलावहे। एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया। एहो तिन कै मन वसिया जिन तुर हो लिखिया आया। एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गली किने ना पाया। कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया। पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटंब सहत स्यो पवित संगत सबाइया। कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजै विण सहजै सहसा न जाए। नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सहस जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। मन तो वह शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै इह सहसा इव जाए। जियो मैले बारह निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया। ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मन हो वे सारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यों बेतालिया। कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारहु निर्मल बारहु ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ती सोए पौचै नाही मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे। कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहै गुर नाले।

पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करुणे सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दाखे लग करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याय।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरह जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खिडह विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगह प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़।

0: कोलू चरखा चक्की चक थल वर उले बहुत अनंत लाटू मां दाणियां गा पंखी पौंदियां लै नसा सूए चाड़ पवाईए जंत नानक पौंदियां गणत नान
1: बंधन बंध पवाए सोए पै करत नचे सब कोए नच नच हसे चले से रोए उड़ना जाए सदना हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन मन पाओ पौड़ी नौ।

0: मोन विगूता क्यों जागे गुरबिन सूता पग उपे ताना अपना किया कमाना अल मलखाई सिर छाई पाए मूर्खंद पत गवाई
1: लावा किथा न पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पुछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सफाए आस अंधे से तेने केवल हाउ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत मन पाऊं दे।

रंग हसे रंग रोवे, चुप पी कर जाए परवा नहीं किसे केरी भाज सचे नाय। फिर वाटे ऊपर खर्च मंगा

0: अंदर पाए
1: पाए अगला
0: मुहे मुह पान खाए सद तकावना इस कहिया शाबाश
1: नानक न चल रही।

0: सुध
1: कार्य ग्रुप की हाजरी में परमपरी सात संयोग आगे हो जो अमृत वेले की हाजरी भरते हुए पावन पवित्र आसन की वार का कीर्तन आप जी ने श्रद्धा भावना के नाल सरवण किया है। पावनित कार्योग भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खुश दिल तना पासों पावन पवित्र मुख वाक की कथा सरवण करिए जी। बुलाओ फतेह वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। धन गुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ ਦੁਖ ਨ ਸਕੈ ਬਿਆਪ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੁਝੈ ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ ਆਦੇ ਅੰਤ

नस जाए अंधार, चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक, ताण माण दीबाण साचा नानक की प्रभ टेक। वाहिगुरु। बेलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास कै

अग्नि महजाल। संत जना का शोहरा तिस चरनी लाग, माया तारी शतर पत तिन छोड़ो त्याग। रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान, ग्रह सत्साकत छत्ती प्रकार ते भिखु समान।

दर्शन भेटत साधकाओ नानक गुण गाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान सत्कार योग सात संगत जी, आप जी वडभागी हो। अमृत वेले तो शाहे शहनशाह शब्द गुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक दरबार विच हाजूरी विच हाजरियां परदियां पंथ प्रसिद्ध गुरु के कीर्तनी हजूरी रागी जथे पासों संपूर्ण श्री आसा दीवार दा शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण कीता। शब्द कीर्तन उपरंत अज अमृत वेले तख्त प्रकाशमान होन वक्त तन तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कृपा कीती, असा सबना ले जो अज हुकम दी बख्शिश कीती है गुरुदेव ने, दा मूल पाठ आप जी ने सरवण कीता है। ए पाक बचन बाणी के बोहित शहीदां दे सिर ताज धन गुरु अर्जन देव महाराज दे बचन उचारण कीते राग बिलावल विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 811 अते 12 ते ए बचन दर्ज हन। आओ गुरु प्यारेओ, आज अमृत वेले जो गुरुदेव ने असां लई हुक्म बख्शे है, इस पवित्र शब्द राही विचार करके सारे मिलके जानन दा यतन करिए, मेरे गुरुदेव अज की असां सबना लई हुक्म कर दे। गुरुदेव दी हजूरी विच इउं प्रतीत हुंदा है, कुछ गुरसिख आए उन्हां बेनती कीती है, गुरुदेव तुसां दे दरों घरों सब कुछ मिले है, पर जीवन प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, आनंद नहीं है, जिंदगी विच सकून नहीं है। मनुख दा ए दावा उदों ही झूठा हो जांदा है जदों ए दावा करदा है कि धन दे आया सब कुछ ही आ जांदा। जिस दे कोल धन है वो दे कोल सब कुछ है, पर ये बेनती करन वाले गुरसिख यही कह रहे ने कि दाता शांति नहीं है, टिकाओ नहीं है, सहज नहीं है, आनंद भी नहीं है, जीवन दा वो लुत्फ ही नहीं है। कृपा करके एक कारण दसो ते साहिब समझाउंदे। फिर सतगुरु बचन करे ने के पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल। निहाल दा अर्थ प्रसन्न, खुश है। आनंद जीवन विच कदों आएगा, जदों रब दी इबादत करन वाले जिहड़े ने उना दे दास जिहड़े अगों सेवा करन वाले रब दे बंदियां दी गुरमुख प्यारियां दी खिदमत करन वाले जिहड़े ने, बचन है उना दे लई दास कै। मालक दी इबादत बंदगी करन वाले सेवा भगती करन वाले ते फिर उना दे अगों जेड़े उना दी सेवा कर दे ने दासां दे दास। साहिब समझाउंदे उना दे लई पानी ढो, पहला लफज है पानी। जदे गुरबाणी सतगुरां ने उच्चारण कीती उदों जिवें अयोके समय विच घर घर विच पानी है, उदों पानी नहीं सी। नगर दे विच एक या दो खूह हुंदे सी, उत्थों पानी भर लैंदे सी लोकी। ते मेरे गुरुदेव समझा रहे ने कि रब्बी

साध संगत कै आंचल लावह, बिखम नदी जाए तरणी, सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए। दर्श

हरत्या है शांत हुए, हर जीव अपनी कृपा करे ता वरतै सब लोय, उठै जिया जुगत होय, धरनी नो सिगार होय, नानक एहो जगत सब जल है, जल ही ते सब कोय, गुर प्रसादी को विरला बुझै, सो जन मुक्त सदा होय। पौड़ी सच्चा विप्रवाहु इको तू तनी, तू सब किच आपे आप, दूजे किस गणी, मानस कूड़ा गर्ब सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी, सतगुर सेवे अपना आया तिस गणी, जे हमें विच हो जाए ताके ही गणत गणी, मन मुख मोह गुबा जो भुला मन वणी, कट्टे पाप असंख नावै।

लख चौरासी मेदनी तुझ ही ते हुई। एक राजे खान मलूक कह कहा वह कोई। एक साहा सदा वह संच धन दूजे पत खोई। एक दाते एक मंगते

सो होइ। श्लोक महल्ला तीजा। बाबीहा गुणवंती महल पाया, औगुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसै, गुरमुख सदा हजूर।

कित्याय संसार सच्चा शब्द मन मारिया एहनिस नाम प्यार जिन पुरखी

पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मथन नानक जो प्रब पाणिया सच्चे दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आय जे सतगुर अगे घालिया ओहे न सकै जमकाल सच्चा रखवालिया गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया मन मुख विण ना वै कूड़ियार फिर है बेतालिया

सच्चै शब्द निहालिया, नानक नाम निदान है, पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा, बाबी है हुक्म पछाणिया,

बाबीहे कूक पुकार रह गई, सुख वसिया मन आए, नानक सो सालाही है, जे दिंदा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा, चात्रिक तू ना जानही, क्या तुद विच तिखा है, कित पीतै तिख जाए, दूजै पाए भ्रमिया, अमृत जल पल्लै न पाए, नदर करे जे अपनी ता सतगुर मिलै सुभाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया, सहजे रहया समाए। पौड़ी

शीतल जल हे वही एक भस्म चढ़ावह अंग मैल न धोवही एक जटा बिकट बिकराल कुल घर खोवही एक नगन

बात हुए। कलयुग में घोर अंधार है, मन मुख राहु न कोय, सेवड भागी नानका, जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा, इंद वरसै कर दया, लोका मन उपजै चाओ, जिसकै हुकम इंद वरसदा, तिसकै सद बलिहारै जाओ। गुरमुख शब्द संभाली है, सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते जन निर्मले सहजे।

हुए सताना घुरै न मावे, साहि गया पछुताए, अंधा किसनु बुक सुनावे, खसमै मूल न पावे, अक्षु प्रीत करे अक टिड्डा, अक डाली वै खाए, खसमै पावे ओ चंगा, जे करे खुदाए खुदाए। नानक दुनिया चार दिहाड़े, सुख कीता दुख होई, गल्लां वाले हैन कनेरे, छड़ न सकै कोई।

देखो एहो तिंगाणा आप न बुझै लोक बुझाए पांडे खरा सियाणा पांडे तू जाने ही नाही किथो हो मास उपन्ना तू एहो अन्न कमात कपाहा तू एहो त्रिभवन गन्ना तू आ आखै हो प्यो पिद अच्छा तू है बहुत बिकारा इते रस छोड़ हुवै सन्यासी नानक कह विचारा पौड़ी हाँ।

तुझ ही माहे समाया एक भगवा वेश कर भरम दे बिन सतगुरु किने न पाया देश दिसंतर भव थके तुद अंदर आप लुकाया गुरु।

कर्पूर है कृपा धारी पूरी लोच हमारी धन धन साहब गुरु ग्रंथ साहब के पावन पवित्र लाहित दरबार दाजरिया बड़े खुशियां भरे मौके से भर के बख्शा लै रही परम सत्कार जो सात संग जी हो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़े मिनटा आप आनंद कार्ज की रस्म आरंभ कर जा रहे हैं साहिबां दी बख्शे द्वारा। इस दे विच सुभाग जोड़ी दे नां हन जी अर्शदीप सिंह ते हरमन कौर। अर्शदीप सिंह जी सपुत्र हन सरदार गुरचरण सिंह ते बीबी राजेंद्र कौर जी दे। बच्ची हरमन कौर सपुत्री है बीबी परमजीत कौर जी दी। सो सब तो पहला मैं आप सब नूं सिख गुरद्वारा सैनोदे की प्रबंधक कमेटी तो इतों की समूह संगत तो इतों के सारे कीर्तन जथे तो ग्रंथी सिंह वालों जीवाएं आखदा जी जो गुरद्वारा जो साडा है ये सब तो वड्डा है कैलीफोर्निया तो सब तो आलिशान भी है। ये ठीक है असी नॉर्थ तो साउथ हॉल दो मंजिला बना जा रहे हैं वह भी तो होर भी आलिशान हो जाना। वो आनंद कार्ज रस्म के कुछ हिस्से ने जी जोड़ी वास्ते भी तो बाकियों वास्ते भी। पहला ऐसा होएगा जी इलाही बाणी दे शब्द दा कीर्तन। शब्द दा पहलियां तुकां हन कीता लोड़िए काम सवार पै आखिए काल दे सवार सतगुर सच आखिए। यह शब्द आप हर शुभ काम शुरू करन तो पहला गाउंदे हाँ जां सुणदे हाँ जां पढ़दे हाँ बख्श लैंदे हाँ गुरु पास के सानू रमता दी बख्शिश कीती जावे। उस तों बाद फिर अरदास होगी शब्द का कीर्तन कर रहे होंगे भाई साहब भाई प्रतपाल सिंह जी रसीला हजूरी रागी श्री मंगला साहब दिल्ली वाले ते हजूरी रागी सिख गुरद्वार सैनो दे। ज्यों ही शब्द का कीर्तन समाप्त होया त्यों ही अरदास होगी जिस दे विच सुभाग जोड़ी ते उन्हां दे माता पिता ही केवल खड़े होंगे बाकी संगतां जिवें आप जी ने बैठे हो इस तरह बड़े प्यार श्रद्धा की भावना नाल चुपता दान बख्शते हुए आप जी ने बैठे रहना जी। अरदास उपरंत भाई साहब भा नवनीत सिंह जी हुक्मनामा लैणगे। हुक्मनामा आपां नूं पता है सारिआं नूं हुक्मनामे दे आखीर ते जदों समाप्ति हो गई तां ओह इशारा करनगे पल्ले दी रस्म वास्ते। सो असीं बीबी परमजीत कौर नूं बेनती करांगे कि ओह अर्शदीप सिंह जी दा पल्ला जो है बच्ची हरमन कौर नूं पकड़ाउणगे जी। ते इत्थे पल्ले दे वास्ते दोनों नूं जोड़ी नूं बेनती है उन्हां ने अपने अपने सिरे तों फड़ के रखना सारे रोग आनंद कार्ज व्यस्त विच ते पल्ले व्यस्त तों बाद फिर असली हिस्सा शुरू हो जाना नामां दा पाठ। सुभाग जोड़ी ने बैठ के सरवण करन लई फैसला कीता हैगा कल्ले कल्ले नाम दा पाठ होवेगा जी। पहली नाम दा पाठ जदों होया उस दे अखीर ते अखीरली दो वारी दोहराई जाएगी ते तंत्र गुरु नानक साहब जी दा नाम जो दूजी बार आया तां ओह इहनां वास्ते संकेत होवेगा इंडीकेशन होवेगी कि जो सुभाग जोड़ी ने मत्था टेक के ते खड़े हो के परिक्रमा पहली शुरू करनी है मेरे वाले पासे नूं आ के भाव अपने सज्जे मोढ़िआं नूं तंत्र गुरु ग्रंथ साहब जी वाले पासे रखना ते जिस दे विच अर्शदीप सिंह अगे अगे ते बची हरमन कौर पिछे पिछे चलेगी सारी मर्यादा गुर मर्यादा है इह जो सिख रहत मर्यादा दे विच भी लिखी हैगी है ते सारे वर्ल्ड वाइड ये हुंदी लागू जी। सो पूरी परिक्रमा दे वेले कीर्तन भी हो रहा होना हर पहली लाम ते सुभाग जोड़ी ने वापस जा के अपने थां ते मत्था टेक के फिर बैठ जाना दूसरी पाठ दूसरी लाम दा पाठ सरवण करन वास्ते। फिर इस तरह दूसरी शुरू हो जाएगी दूसरी परिक्रमा फिर तीसरी ते चौथी ते चार लावां ही हन ते चार ही परिक्रमा ने ते इक धर्म दे अंदर आपां चेते रखिए। उस बाद सुभाग जोड़ी ने विराजमान रहना बैठे रहना कुछ मिनटां वास्ते होर क्योंकि इलाही बाणी दे कुछ शब्द होर जो हन मर्यादा दे विच आउंदे उन्हां दा कीर्तन भी होना। उस दे बाद अरदास बेनती करेगा अरदास तों पहलां जो आपां बना रहे हां साउथ ते नॉर्थ हाल दो स्टोरी उस वास्ते असीं हर विआह ते सेवा वास्ते बेनती करते हैं। वो माया जो है कीर्तन जथे की पहला चक ली जाती है
ਇਸ ਜੋ ਪੇਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਰ ਉਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੁਦੇ ਪੈਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਆਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਲੋਕ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਰਤ ਮਰਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਲਈਏ ਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਖੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।